किशोर हेमराज डागी र आशा भिषे, लय हेमराज डागी, शब्द खेम सारू मगर, एरेन्जर यमन खनाल, पी आर बीटी 6054 1450, उत्पादक

0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: हरि शरण, म लक्ष्मी भुसाल सुनिराछु रेडियो एनआरएन 99.1
0: रेडियो एनआरएन 99.1।

क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर, नाम एक काम अनेक, शक्तिशाली 4 एंटीनामा वाइड कवरेज, 5G स्ट्रेंथ, लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड, सबै अस्त्र को शक्ति बोकी को 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया मा, साथ मा IPTV मात्र 250 प्रति महीना। बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन्। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो।

0: web surfer aba kar karna fast internet
1: नेपाली रेडियो नेटवर्क रेडियो एनआरएन 99.1 मा यो हो दोहोरी

0: निपुगियो
1: लाला मेरे निपुगियो
2: तो बोल जा रहा है जाई
0: हम ना वाले क्या उन्हीं
2: की
0: बात बस बढ़ ले रहा हूँ
2: लाला

0: को व्यवस्था छ।
1: विद्यार्थी कर्मचारी लगायत का नियमित ग्राहक को लागि विशेष छूट को समेत व्यवस्था छ।
2: साथै होम डेलिभरी को पनि सुविधा छ। प्रोप्राइटर दिल्लीराम पाठक,
0: व्यस्तै बाग बजार जोशी पेट्रोल पम्प भन्दा ठीक अगाडि।
2: संपर्क नंबर 98465 43780।

Worldlingo Festivity Offer. अब पाउन होस एक वर्ष को 200 MBPS इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेटअप बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छिटो बनेगा यह वर्ल्डलिंक।

क्यों घास वन में आगो लगो भनी जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भनी वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ले सारे पीर मंच फागुन देखी जेठसम आगो लगने डर आप

0: भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अंग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवी अनुसार बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गतेदेखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गतेसम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गतेसम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस व्यासेक विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0-65-59-00-96 98-560-62-97 98-560-24-528।
1: Sincerely, it's your own Damoli FM 94.2 MHz.